ढल कहाँ, गगन के गौन कहाँ, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कलगी धर पाछा काल दी गति अगाद कथन करदे हन। दशमेश पिता जी आनंदपुर साहिब ते ऊने साहिब दे विचकार जो बंभौर साहब गुरुद्वारा है सतलुज दे ऊपर, उथे बैठ के काल दा कौतक वेख के ए बाणी रची। आपने की तकिया कि मिर्ग आया है पानी पीन लई, ज्यो पानी पीन लगदा तां इस दे मुख विच मच्छी फस जांदी है। दम रुक गया, ऊपर बाज वेख रहा सी, उड़ रहा है बाज ते वेख रहा कि मिर्ग दे मुख विच मच्छी फस गई। ते ज्यो इस मच्छी नू चपट मारन लई बाज आया तां ओ भी मिर्ग दे शिंगां विच फस के शरीर छड़ गया। अख फुरत विच ए तीन मौतां वेख के, ए काल दा नजारा वेख के साहब कलगीधर पातशाह कहंदे ने जल कहां, डूंगे जल विच रहन वाली मच्छी किथे, किवें काल ने सद लिया किनारे ते, आ जा भाई तेरा समा आ गया। थल कहां, तेज रफ्तार थलां ते दौड़न वाला, जमीन ते दौड़न वाला मिर्ग किथे, मौत ने बुला लिया। उच्चियां आकाशां विच उडारियां मारन वाला बाज किथे, मौत ने बुला लिया, आ जा भाई। ते अख फुरत विच तीन मौतां वेख के धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे हन कि जल कहां थल कहां, गगन के गौन कहां, काल के बनाए सब काल ही चबाए हैं। कबीर जी ने बड़ा सुंदर ख्याल लिखे कि कबीर एक मरण ते दोए मुए, दोए मरण तै चार, चार मरण ते शै मुए, चार पुरख दोए नार। कबीर जी कथन करदे हन कि एक हरनी दे मरने ते नाल उसका बच्चा भी मर गया, इसलिए दो ओ मर गए। दोहां दे मरने नाल दो होर मर गए, क्योंकि शिकारी ने जाके शिफ्ट बनी है मिर्ग दी। ज्यो निशाना मारिया मिर्गनी नू, ता मिर्गनी हरनी भी मर गई, ते जेड़ा इसके बच्चा होने वाला सी, क्योंकि गर्भवती सी, बच्चा भी मर गया। हुण जिथे बैठ के इसने निशाना बनिया सी, उथे नेड़े ही सप निकलिया, जिसने शिकारी नू दस्या, शिकारी नू दस्या, ते शिकारी ने झट तलवार कढ के सप दी भी उथे ही मित कर दिता, ते आप भी उस वेले शरीर छड गया। तां कबीर जी कहंदे हन दोए मरण ते चार, हुण चार हो गए, इन्हां चौहां दे मरने ते दो होर मर गए। शिकारी दी घरवाली जो गर्भवती सी, उसने जदों वेख्या मेरा पति गुजर गया, हुण मेरा जीवन त्रिग है, वो भी उथे ही टकरां मार मार के आप मर गई। क्योंकि कबीर जी ये सब कुछ अखी वेख रहे सन, ये शेह दी गिनती कीती है बाणी दे विच। मिर्गनी दा बच्चा, शिकारी, शर्प, अहेड़न ते पेट दा बच्चा, ये चारे पुरख हन। शिकारी दे घर वाली ते हरनी दे दो, ये दो औरतां हो गईयां। इस दी साखी इस तरह है कि जिस वेले शिकारी अपने घर विचों निकल के बाहर शिकार खेडन गया, तां अगों ही एक गर्भ वाली हरनी मिल गई। इस वेले शिकारी ने खिंच के निशाना चलाया, उसी वेले हरनी मर गई, नाल ही उसका बच्चा मर गया। इतने नू जिथे फंदक खड़ोता सी ना, उस जगह तो सप निकलिया, सप ने डंग मारिया, ते शिकारी ने झट तलवार मार के
ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ

कैस मरना हो जेकर साहब मनो ना विसरे तो सहला मरना हो। हजूर कहंदे मरना सच है जीवना झूठ है। ए मनुख मरने नाल ता जगत डरदा है गुरमुखा नू कहदा भई डर है। कबीर जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद मरने ही ते पाई है पूर्ण परमानंद। जिना ने आके श्वास श्वास भजन कीता है सिमरन कीता है वो ता बाजी जीती बैठे हन वो ता पुग चुके हन वो ता जीवन मुक्त हन उना नू मरने तो डर नहीं। गुरु अमरदास पातशाह कहंदे हन जेड़ा हुक्म बुझ गया है गुरु दा संसार ते आउन दा जिनू पता लग गया है मैं क्यों आया ते फिर उसने सेवा सिमरन परपकारी जीवन बिता दिता है। गुर प्रसादी जीवत मरे हुक्म है बुझे सोए नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन होए। ओ सदा जीवदे हन जेड़े गुरु दे हुक्म विच निर्मल पाओ विच अपना जीवन बतीत करदे हन। भाई साहब नंद लाल जी कहंदे हन कि गुरमुख हमेशा जीते हैं मरते कभी नहीं वो जिनकी जबां पे हर दम सतनाम वाहिगुरु है। जो हर वेले ईश्वर भगती विच जुड़े हुए हन जो हर वेले अपने मालिक दे चरणा विच जुड़ के जपदे हन श्री वाहिगुरु फिर भाई उना नू उना दा आउना भी सफल है उना दा संसार तो जाना भी धनता दे योग है। ओ सदा जीउंदे हन नाम रहो साधु रहो रहो गुर गोबिंद कहो नानक ए जगत में किन जप्यो गुर मंत। तो निरंकार ने जितने श्वास दिते हन भाई वो तो उतने ही रहने हन। जे भले कर्म करिए भले कर्म करन नाल ए साडे श्वास घट खर्च होंदे हन भोग बिलास विछियां विच दुगने श्वास खर्च हो जांदे हन जिस करके उम्रा घट जांदी है। ते जे सतपुरशां दी संगत रहे गुरु की संगत विच मन करके भी तन करके भी जाग के नाम दा अमृत पींदे रहिए तां ए श्वास जमा रहंदे हन घट खर्च होंदे हन। फिर जिस तरह माया बैंक विच पई होवे तां विहाज नाल मिलदा है इसे तरह वधदे रहंदे हन जदों चंगे कर्म कोई करदा है। उम्र उतनी होंदी है श्वास उतने ही हन तेरे खर्च करन विच कई मनुख कुकर्म करके अपने श्वासां नू छेती जाया कर जांदे हन कई एक एक श्वास नू जप जप के सफल कर लैंदे हन उचारण करो।

श्री वाहे पर श्वास उतरे हैं जितने निरंकार ने दिते हैं और क्या जानना कि वो मरेंगे कैसा मरना होए ये कोई पता नहीं है कारण बनता है ये कारण निरंकार नु पता है। व्यास जी दे पास एक बच्चा सेवा करया करदा सी आके ते व्यास जी नु बड़ा चंगा लग्या ते जदों उसते मस्तक दियां लकीरां देखियां ना ते समझ गए भाई इहदी ते उम्र ही थोड़ी है पर हर वेले सेवा विच लगा रहिंदा सी ते मन विच सोचिया भाई अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर दे अगे सिफारिश कर दईए इहदी उम्र वधवा दईए चलो लै चलदे हां भगवान शंकर दे पास लै गए कि ओ धरती नूं लै करदा है क्योंकि एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान उम्र वधवाई है। जदों इन्हां दे पास गए तां आख्या वही सृष्टि दे रचन वाला तां ब्रह्मा है उहदे कोल चलदे हां मैं कुछ नहीं कर सकदा मैं तां हुक्म अनुसार लै करदा ब्रह्मे दे पास गए आप उत्पत्ति करदे हो इहदी कुछ उम्र वध जाए तां कहन लगे ये काम विष्णु भगवान दा ते जां उत्थे पहुंचे वह कहन लगे ये तां विधाता ने जो लिख दिता है ना ओह ही जो कुछ करना चाहे उही कर सकती है उचारण करो श्री वाहिगुरु ब्रह्मा विष्णु महेश तिन्ने देवते नाल तुर पे सिफारिश लई ते भगवान व्यास जी भी नाल हन ते जदों विधाता दे पास गए बच्चे नूं बाहर बिठाया आप अंदर चले गए सिफारिश करन लई तां विधाता जो सी ओ कहण लगी भई गल ए है पर बाहर जाके पहला बच्चा तां वेखाओ जीवंदा भी है क्योंकि मैं तां उसदी कर्म रेखा ही ऐसी लिखी सी कि जदों ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे होणगे तां उदी मौत होवेगी नहीं ते कदी उसकी मौत हो ही नहीं सकती उचारण करो श्री वाहिगुरु जिदी सिफारिश करन लई आए सी ना ओ सगों मौत दा कारण बन गए तो मौत कारण बन जांदी है बुला लैंदी है अपने पास इसलिए गुरु अमरदास पातशाह गरीब नवाज कहंदे हन भाई किसे नूं कुछ पता नहीं कदों मरना है किथे मरना है ते मरण दा कारण की बनेगा इसलिए साहिब नूं सदा चेते रखना अकाल पुरख वाहिगुरु चेते होवेगा तां भाई अंत वेले भी तैन चेते च आवेगा उचारण करो श्री महापुरख बचन करया करदे सन भाई गुरु नानक ने एवें नहीं सानू अमृत वेला बख्शिश कीता ऐ जीव अमृत वेला सच नाओ वड्याई विचार बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज बचन करया करदे सन कि अमृत वेले इसलिए गुरसिखां नूं हुक्म है अमृत वेले जाग के इशनान करना नितनेम करना गुरु दे चरणां विच जुड़ के अपने दरगाह दा बैकुंठ दा टिकट पक्का करना इसलिए कि जदों अंत समा मनुख दा आउंदा है ना उस वेले भी ऐसा समा बन जांदा है जिवें अमृत वेला है ते जे अमृत वेला सौं के बिताया होवेगा तो किथे परमेश्वर दा नां चेते आउंदा है उस वेले नहीं आउंदा ते जे तू अपनी होंद विच अमृत वेले जाग के इशनान करके नितनेम कीता होवेगा जदों अखीरले श्वास तेरे आउणगे ना तेरिया अखां अगे ओ अमृत वेला आ जाएगा अंत समय ते फिर तेरा जी करेगा मैं हुण जपण दा वेला है हुण सौण दा वेला नहीं ते जदों तैनू उस वेले चित आ जाएगा तेरा लोक भी ते परलोक भी सुहेला हो जाएगा इसलिए भाई इस शब्द विचों सानू गुरु ने यह सुमति बख्शी है कि असी हर वेले मौत नू और परमेश्वर दे सिमरन नू चेते रखना है अमृत वेले इसे लई जागी दा कि अंत वेले भी सानू गुरु चेते आवे गुरु याद रखे
ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾ ਵਿਸਰੋ, ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ, ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਨਾ ਭੁਲਾਓ, ਆਪਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਰੋ, ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ। ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਦਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਹਣਾ ਮਨੁੱਛਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਜਾਣਨਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ।

इस तरह तू सानू कट रहे हैं, पर याद रख तू ज्यों ज्यों सानू कटदा है असी कटदे नहीं, अगे नालों वधदे जा रहे हैं और कटदा कटदा

को प्रबंधक रजाए हो। तो इस वास्ते फिर समा कित मिलेगा, आप जी ने जिसका भी हुक्म आप जी करोगे आप जी सुना सुनावे, क्योंकि हूँ अनाथ साहब का पाठ जोड़ा है तो मन में होगा कि दो तीन मिनट लगने अनाथ साहब का पाठ हो जाना है, पर नहीं, पांच सात मिनट दस मिनट अनाथ साहब को भी लग जाने, क्योंकि अनाथ साहब का जो हुक्म है वो इसे तरह ही है कि जब मन में आनंद आवे ना तो फिर अनंद साहब है। तो कई बार ऐसा होता कि सारा कीर्तन सारी बाणी असी करते हैं, कीर्तन भी करते हैं, सुनते भी हाँ, तो जो अनंद साहब की वारी आती है तो जल्दी जल्दी अनंद साहब पाठ कर दिता जाता है, ना करने वाले पता लगता है तो ना सुनने वाले पता लगता है। इस वास्ते अनंद साहब का पाठ पातशाह जी ने हुक्म लाया है कि खेड़े का प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है। अनंद साहब जो पढ़ीए तो मन खुशी आ जाना चाहिए, खेड़े में आ जाए, आनंद आना चाहिए है। सारे कह कि अनंद साहब का पाठ पढ़िया आनंद आ गया है जी। इस वास्ते आओ बड़े प्यार के नाल अनंद साहब का पाठ, हुण 12 तो टाइम उपर हो गया है तो हुण दिल करता है कि अनंद साहब नूं रामकली राग विच ही गायन करिए। रामकली

अकेडमी गुरुद्वारा बड़ू साहिब जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश दिया बीबिया दे ढाडी जथे दी इन्नी सेवा प्रवान करो। बुलाओ फतेह ते

कोई खबर नहीं, अहंकार कर रहे हैं। इसे लिए हजूर कह दिया ना, तन जोबन का गर्भ ना कीजे, कागद ज्यों गल जाएगा। पता नहीं अगला पल किहो जिहा आ रहा है। धन गुरु नानक पातशाह संसार नूं तारदे होए एक नगर दे बाहर जा बैठे, वेख्या के सारे लोग बड़े खुशियां मना रहे हैं, ते झट बाद वेख्या के रोना पिटना पै गया है। इत्थे मर्दानिया आ हुणे तां खुशियां मना रहे सन, ते हुण वैन पै रहे हन जाके पता करके आ। मर्दाना जदों गया पता करके आया तां आख्या गरीब नवाज सच्चे पातशाह, एक सेठ दे घर लड़का होया सी। बड़ी मुद्दत ते बाद औलाद होण दे कारण सारा नगर बड़ियां खुशियां मना रहा सी, पर अकाल पुरख वाहिगुरु दी नेत नाल ए लड़का शरीर छड गया, ते ओदे विंजोग विच हुण रो रहे हन। मर्दानिया ए संसार है ही दुख सुख दा एक नगर है, इत्थे पता नहीं लगदा। जिस तरह समुद्र विच बेड़ा जा रहा है, पता नहीं किथे तूफान आ जाना है, किथे शलां उठ पैनिया हन, किथे शांत हो जाना है। ए साडा जीवन भी ऐसा है, पर प्यारी साध संगत जो गुरु की बाणी सानू बख्शिश कर दी है कि भाई राज भाग दुनिया दे धन दौलत विच सुख नहीं हन, सुख तां हरि दे सिमरन विच है। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया। जिन्हां हरि दा सिमरन कीता सुखी तां ओ हन। कितने राजे महाराजे चक्रवर्ती पातशाह संसार तो चले गए हन, ते भाई नाम किन्हां दा रह गया जिन्हां ने हरि सिमरन कीता। धन बाबा आनंद सिंह जी महाराज क्या करदे सन कि इस धरती ते इतने राजे महाराजे वजीर हो चुके हन, जदों असी एक कदम रखदे हां तां एक राजे दे सिर ते दूसरा वजीर दे सिर ते रखदे हां। इतने राजे महाराजे चक्रवर्ती पातशाह हो चुके हन, पर अज नाम किन्हां दा अमर है जिन्हां ने जपिया है श्री वाहिगुरु। तो इसलिए हजूर कहंदे हन भाई पता नहीं अगला पल किहो जिहा आवेगा, इसलिए जप जप के इना श्वासा नूं सफल कर लै। तेरा संसार ते आउणा भी ते संसार तो जाना भी धनता दे योग।

जैसे सर्प दी आरजा है किसे काम नहीं, और बड़ी वड्डी आरजा होंदी है सप दी। अजगर सप्पां दी सैकड़े हजारां वर्ष आरजा होंदी है, आख्या साकत दी भी इसे तरह ही आरजा, जिस तरह ओ किसे काम नहीं आउंदे, बिना नाम तो मनुख भी किसे काम नहीं है।

ये धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की उस्तत आओ समा भी हूँ समाप्ति दे वल पहुँचते पहुँचते भी जे मन में ख्याल बनावांगे कि समाप्ति करनी है तो ताई 35-40 मिनट फिर भी लग जाने हैं क्योंकि अजे आनंद साहब का पाठ या होर एक दो बंदिशां तराने रहिंदे ने तो आप जी ने सरवण करा के आओ प्रोफेसर साहब का हुक्म है कि छनकार निराले तीरां दी वो जरूर सरवण करा तराना भी सरवण कराउंदे आओ पहला छनकार निराले तीरां दी जो कि इस तरह की एक संगीतक बंदिश है संगीतक रचना है उहदे विच भी अलमस्त होणा ने एक ऐसी कलाकारी फिट कर दिती है ऐसी कला दे नाल उस नूं बंदिश नूं ऐसा जोड़िया है स्वर ते ताल दे नाल कि तबले दे विचों किस तरह किहड़े किहड़े बोलां दे नाल तीरां दी आवाज़ निकलदी है किस तरह रणजीत नगारा वजदा है ते किस तरह घोड़े दे टापां दी आवाज़ है ये छोटी जी बंदिश है 5 मिनट दी आओ ये भी सरवण कर लो उस तों बाद फिर तराना आप जी फिर बड़े प्यार दे नाल

मंदा चोर यार जो आ रहो पर घर जो हंदा निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा काम क्रोध मद लोभ मोह अंकार करंदा विश्वास घाती आकृत घन

सत्संग लो न आवई, जैसो मन लागे पराधीन हीन दीनता में, साध संग सतगुर सेवा न लगावई। जैसो मन किरत बिरत में मगन हो, साध संग कीर्तन में न ठहरावई।

सब लोग में संजोग पो चकवी बेयोग सोग पागहीन जानिए। जैसे दिन करके उदोत ज्योत जगमग उल्लू अंध कन प्रचीन उन्मानिए। सरवर सरता समुद्र जल पूर्ण है त्रिखावंत चात्रक रहत बकुबानिए।

सोपाहीन पागहीन तपहीन बावरी दृष्ट दर्शहीन शब्द श्रुतहीन बुद्ध बलहीन सूदे हस्त न पावरी।